गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तीसरी वेर आए और तीसरी वेर नंगी कृपान है, खून दे नाल लथपथ है और तीसरी वेर भाई हिम्मत सिंह जी प्यारा, उदू बाद मोहकम सिंह जी प्यारा, साहिब सिंह जी प्यारा। जे मैं सारे दा डिटेल च ना थौं पते अर्ज करा ते समा लंबा हो जाएगा। एक आखिरी दो मिनट की चीज कह के तो खिमा दे जाचक होना है। और जिस वेले पंज नितरे पंजां तो बाद कुछ समा कलगी वाले पातशाह आए ना, कई घबरा गए, कई तो भज गए, कई तो लंगर च जा बड़े, और जेड़े जदों काफी समा ना आए तो पिछे वेखण लगे कि पिछले पास ना आ जाण कलगी वाले पास। कुछ देर तो बाद आए तो पंजे ही नाल ने, जदों चेहरिया ते नूर वेख्या गुरु की बख्शिश हो गई ना, फिर सारे काले पै के मैं क्यों नहीं उठे। उदू बाद अमृता बाटा तैयार किया, अमृता बाटा तैयार करके पांच घुट इनू पीण नू दिते, इहदी अंतरीप आत्मा बदली, पांच छटे इहदियां अखां विच मारे, इहदी तकनी सम कीती, इहदी तकनी किसे गरीब नू वेख के लाल ना होवे और किसे तकड़े नू वेख के नीवी ना पावे, इहदी तकनी विच वेख पराईयां चंगियां मामा धीआं भैणां जाणे वाली अवस्था लियांदी, पांच चुले इवे दिमाग विच पाए, इहदी रहणी बदली, इहदी कहणी बदली, इहदी खुराक बदली, इहदी पोशाक बदली। और उस तो बाद पंज ककार दिते, ककार कड़ा जेड़ा है, कड़ा कहे चोरी आदि घाट को ना हथ लामी। कई बार पुछ लेंदे है वे कड़ा पाउण दा मतलब की, भाई साहब भाई संतोख सिंह जी लिखते ने वे कड़ा कहे चोरी आदि घाट को ना हथ लामी, कच कहे जती रौ त्याग पर नारको, गंगा कहे टुटे रोमा वांग तज पाप निंदे है, कहे कृपान कट लो मोह हंकार को, केस कहण साडी न्याई पाल सत संग धर्म, भई अमृत कहे अमर हो जा पाके शब्द सार को, ऐसे पंजे कके जिन तार लिया संतोख सिंह पावे गंग सिंह साहब के ददार को, ते कलगी वाले पातशाह आपे गुरु।

मैं क्या मांगू किच थिर न रहाई। तू दाता है, तेरे कोल सारियां दाता ने, तू दाता दा मुजस्मा है। पर सोचना तो मैं है, पई मैं मंगा की। हे मालिक मैनू ओ दात दे जड़ी

नाम मैनू अपना नाम दे। ता नाम किदे कोलू मंग रहे ने, जेड़ा जर्रे जर्रे विच रमिया होया, जेड़ा घट घट रव रहा बनवारी। ता साहिब सच्चे पातशाह दी महान पवित्र बाणी दा ए पवित्र

ब्रह्मा एदियां पत्तियां विच वसदा है। ब्रह्म पापी बिस्न डारी विष्णु भगवान डालियां च वसदा है। फूल शंकर दे ओ भोले नाथ शंकर फूलां विच वसदा है।

परम सम्मानीय गुरु खालसा साहब सिंह जी, आप जी बड़े प्यार साहब श्रद्धा साहब धन धन श्री गोबिंद सिंह साहब जी महाराज इन्हां दा धन्यवाद करते हुए खालसा पंथ के सृजन हारे दाता की सिफत सराहते शुकराना करने बाणी नाल जुड़ा गुरसिख साहब सिंह ने यत्न किया है। बहुत ही शलाघा योग कदम है। एक गल याद रखने वाली है, वो है अपने पिता का विरसा। जे असी अपने पिता के वारस हां, जायदाद असां पिता की सामनी है, हक असी जताते हैं, तो फिर यह शब्द जो कहे हैं गुरु साहब जी ने क्यों जहा खालसा साजिया दिखाया है। आत्म रस जो ज्ञान ही सो है खालस देव, आत्म रस जो ज्ञान ही सो है खालस देव, प्रभ मैं मोह मैं तास मैं रंजक नाहिं भेद। गुरु नानक जी का की प्रथा है, गुरु चेला बनिया चेला गुरु बने, इस करके कोई गुरु अते चेले विच भेद नहीं रहा। एक गल होर याद रखने वाली है, गुरु साहब ने सानू गल ला लाया, अनंतपुर का वाकया याद करो, सिंह विदावा लिख के दे गए, आपे अपने घर प्रत आए, उन्होंने मरी हुई अणख जगाया कि ने कर दिया मातावां भैणां अते सिंघणियां ने। मैं जो तत् विचारिया है, अगर अजकल दिया पत्नियां भैणां मातावां इस गल का प्रण कर लैन कि गुरु दे सिख अखवाण वाले अते गुरु नूं विदावा लिख के चल रहे गुरसिख, अगर गुरु दे बनना चाहते हैं, अगर गुरु का अखवाना चाहते हैं, तो गुरां का हुक्म मने, ऐसी गल ना होवे। असी भुले हुए छेती घर नूं प्रत आईए ते अच्छा है, ऐसा ना होवे के घर प्रत के फिर जिनी कुर्बानी चाली सिंघां नूं करनी पई इतिहास आपके सामने है। सो ऐसे दशमेश पिता जिन्हां ने सानू गरीबां नूं लताड़िया होया नूं गले गाया, ऐसे शहनशाह मतलब भाई साहब भाई नानदास साहब जी ने जो शुभ वचन कहे हैं, आप प्यार साहब सुनो।

दुर्योधन। एक बारी प्यार नाल बोलिए सतनाम, मन बिरतियां नूं एकाग्र करे। भाई साहब लिखते हैं, फिटका होके बोलिया दुर्योधन, की प्यासी नौकरां दे घर। भाई साहब लिखते हैं,

राजा बोली थे बोली जा रही, ठीक है भाई। हुण मैं बोला, भगवान ने आख्या, हुण तू गल अपनी पूरी कर ली, हां हुण मैनू जवाब दियो। भगवान ने आख्या, हुण तू सन्मुख होके सामने होके मेरी गल सुन। तेरे घर विच सबो कुछ सब, पर एक गल मैनू नहीं दिसदी, जिथे एक गल ना होवे मैं उथे भुल के भी नहीं जांदा। कि भाई साहब लिखते हैं,

गुरु का सिख हुण प्यार तो खाली हुंदा जा रहा। भाई साहब प्रेरणा देने भगवान कहिंदा वे उत्थे भुल के भी नहीं जांदा, वाहगुरु का नाम उत्थे भुल के भी नहीं आंदा, जिन्हां दिलां विच खुदगर्जी होवे।

नानक कस मल जाए कस मल जाए हर खां नानक कस मल जाए रे मदा जानी रे दबा दबा मबा रे गदा रे हरि गदा नि रे दा दरि गदा नि रे दा दरि

पार्स पेट पर्स करो रामदास गुरु हर सतकियो समरथ गुर सिर हत्तरियो कसमल जाय हर घनन कसमल जाय हर घनन।

गुरु अमर गुरु श्री सत कल जुग राखी पत अग्न देखत गत चरण कमल दास चरण कमल दास सब विद्मान्यो मन तभी पयो प्रसन्न गुरु जोग तख्त दियन गुरु रामदास नाये रामदास सरी नाये रामदास नाये रामदास सरी दस सरी दस दस नाये रामदास सरी नाये रामदास नाये रामदास सरी हम अब गुण बार

रघुवंश रघुवंश तिलक दशरथ कारी मन बाछे ताकी शरणं रघुवंश तिलक दशरथ कारी मन बाछे ताकी शरणं सतगुर सेव अलखगत जाकी।

आनंद सावधा पाठ करके कीर्तन की समाप्ति अरदास होगी हुक्मनामा कड़ा प्रसाद की देख बच्चिया वालों गुरमुख परिवार वालों जो सेवा है वह भी प्रवान करनी तो आओ हम आनंद सावधा पाठ सारे मिलकर करिए गुरु नानक पातशाह मेहरबान सतगुरु आप जी दे प्यार वाले गुरसिख माई पाई साहब जी जिन्होंने आप जी ने बख्शिश करके ए दात बख्शी और आप जी दे दरबार ही जुड़ के आप जी दे बख्शिया खजाने सतगुरु आप जी दे पवित्र पावन शब्द का आदर करते हैं कीर्तन भेज गाउंड अरदास कराते हैं अंतरगामी गुरु जी आप अपने गुरसिखा बच्चे बच्चिया नामदान बख्शो कारोबार च वादे बख्शो सिखी जीवन सत्संग दात बख्शो।

把历史碑借到司马改审，कोई जो दी लैन आया जे किसी ने कहा मेरे को पैसे नहीं ते कहना कोई गल नहीं तू जुते लै जा जोड़ा।

दर्शन कहते हैं। हे रविदास, इस आस पे बैठा है कभी ना तेरे दर्शन हो और सा संगत जिदे मन में इन्ना वैराग हो वे, वो फिर दुनिया दे राग रंगा वाल तन दौलत वाल कि

कि सब कुछ है जो सत वचन नहीं तो फिर कुछ भी। एक कथा केवल सुनने वास्ते नहीं सिख्या वास्ते के पति पत्नी होन ते उन्हां दा सुभाव और विचार कैसा होवे। भगत कबीर साहब रहे कबीर साहब कहते ने अखबार ते घरवाली कहती है सत वचन। हुण इस नूं सुन के असी अपने मन विच देखिए असी किन्ना कि एक दूसरे का कहना मनदे। पति कहता है ते घरवाली जी करके अगो बोलती सत वचन कहती या घरवाली कुछ कहती है।

बचा रहे हो। पर माता पिता और दुखी हो गए। अग्गे ते पुत्र दानी सी, अब गुरू भी दानी निकली, आपको सतनाम सिलवाया। एक दिन माता पिता ने कहा, रविदास तेनू पाले और तेरा ब्याह कर दिता। सोचे असी तू कमाई करके सानू खवाएगा, पर तू ते दानी, असी तेनू कमा के नहीं खवा सकते। इस तरह कर, जो समान चाहिए लै लै ते वखरे हो जा। साडे वालों कमाई कर, साडे वालों दान करी। माता पिता ने वखरिया कर दिता। शाही रस्ते ते अपनी चुगी पा ले, चौपड़ी पा ले, पर अजमान डाढ़ा दुखी होया। मापिया ने केवल इस करके वखरे कर दिता कि मैं पैसे नहीं कमांदा, ते कि दुनिया में जो

कोई पैसे दे गया था, मैं ठीक जे नहीं दी था भी थी, हालत ही हो गई। कई कई दिन भगत जी भूखे भी रहे पर भक्ति नहीं छड़ी। इन्हों दिन गंगा ते अपीज नक्षत्र का मेला लग्या करता सी। एक दिन घरवाली ने कहा, भगत रविदास नूं भगत जी हजारां लोग गंगा इशनान करन जांदे ने, मेरा भी चित करदा है असी भी गंगा इशनान करन चली। भगत रविदास कहन लगे, भरिए लोके सब तो वड्डा तीर्थ

गंगा स्नान करके भगत जी घर वापस आए। दिन बीतते हैं, एक दिन एक महात्मा रविदास जी की चुटी विच आए। अपने सवाल अनुसार जो कुछ बल्ले सी सेवा की, जान लगे वो महात्मा कहते ने, रविदास तू बड़ा गरीब है, तेरे को माया नहीं है, मेरे को एक पारस है, एक पारस तू ले ले, ये पारस जिन्हों भी लाएगा वो चीज सोना बन जाएगी, सोना बाजार बेच ते सोने मंदिर मकान बना, आए गए की सेवा कर। सत्संग भगत रविदास जवाब की देते उस साधु कह लगे, महात्मा मेरे को इना समा नहीं कि पहला मैं पारस के नाल सोना बनाव, फिर उस सोने नु बाजार बेचन जा, जिन्ना समा मैं सोना बना के बेचना है उन्ना समा मैं हो

हर कोई गुरमुख भी नहीं हो सकता। अब माता जी में मर्जी कह देने हैं, आओ गुरमुख होगी। अजकल तो लोग

बड़े समय बाद ओही महात्मा फिर आए, पगल दी ओही हालत ते पुछ देने रवदास, मैं तेरे को पारस दे गया सी, ते भगत जी कहते ने मैनू ते पता नहीं जिथे रख गए सी उथे पिया होगा, आखो सतनाम सिंह वो पारस दरवाजे दे नाल खोलिया, पारस हाथ विच पकड़िया, ते वो महात्मा कौन है? वो महात्मा और कोई नहीं, आप हरि परमात्मा है, आखो सतनाम सिंह प्रिख्या लैण आए सन, समझ गए भगत ने माया ते काबू

पगजी ने मुंह परले पासे कीता कि वह महात्मा बैठे बैठे आलोक हो गए। पगजी कहंदे ने उधर ते कुछ भी नहीं, जब सामने देखे कि वह महात्मा आलोक हो चुके। हुण मन वैराग नाल भरे है, ओए मना ओ आप तेरी चुकी विच आया पर तू पहचान ना सके। मन वैराग नाल भरे आ ते भगत रविदास जी फिर ये

जिससे मैं महात्मा गए। उस दिन तू भगत जी अमृत वेले जद उठते ने अपना आसन झाड़ते ने पांच सोने दिया मोहरा निकल दिया उन्हां मोहरा नूं ठीकरियां मिट्टी समझ के एक पासे सुट देते। जद मोहरा का ढेर लग गया सुत्या पिया पाके आई रविदास ये ठीकरियां नहीं मिट्टी नहीं ये सोने दिया मोहरा ने मैं अपनी खुशी नाल तैनू दे रहा इहदे विच मेरी खुशी है। सवेरे एक सेठ आवेगा तेरे सोहने मंदिर मकान बनाने वास्ते इनकार न करे। एकदम भगत जी उठ के बैठ गए घरवाली नूं उठाया ते सारी गल दसी। घरवाली ने कहा भगत जी जे परमात्मा की इच्छा है फिर सानू इनकार नहीं करना चाहिए। दिन चढ़िया एक सेठ आ पहुंचे मोहरा दिया थैलियां भरी मथा टेक के कहन लगा भगत जी मेरे घर पुत्र कोई नहीं सी मैं सुखना सुखी जे मेरे घर पुत्र होवेगा ते रविदास भगत दे मंदिर मकान मैं आप बनावांगा। उस परमात्मा ने मैनु पुत्र बख्शे उस परमात्मा ने मेनु पुत्र बख्शे है ते मैनु हुण आके आ दियो मैं सेवा कर। सोहणे मंदिर मकान बन गए भगत रविदास की जय जयकार होण लग पई। परसाद सिंह इह समा किहड़ा सी एक भी कौड़ा सच है वो समा सी जद कोई नेवी जात का मंदिर नहीं सी जा सकता कोई पूजा नहीं सी कर सकता उस वेले की कथा। अज भी कई स्थान ऐसे हैं जिथे नेवी जात के स्टूल कास्ट

माया मन तोल करदा बुजुर्ग मर जाए ते दिया पुत वो अंदर मन विच सोचदे ने हुणे वड्डा ते मर गए हुण ए देखिए कि साडे हिस्से विच की आंदा है आखो सतनाम श्री अवर मरत माया मन तोल मन विच ए तोलदे ने कि हुण साडे हिस्से विच

पूज्य मंदिर सोहना घर सुंदर नारी सोहना रूप सोहनी कारवाई इस शब्द को यह ना समझना कि दुनिया दिया पुत्र कारोबार छड़ के बह जाइए नहीं पानी यह कहती है कि सब कुछ है पर इस सब कुछ ना समझ क्योंकि सब कुछ परमेश्वर का नाम ये चीजा दे कभी भी तेरा साथ छड़ जाने गियां और परमात्मा वो कभी साथ नहीं छड़ता इन चीजा रह के जरा

मैं बड़ा ऊंचा, मैं तो हमेशा यही भी कहना कि मैं बहुत नीवा हूं। मेरा बहन उठना भी नीवियां दे नाल पर एक गल से

पंच को झगड़ा झगड़त जन्म गवाया, संसार वल निगाह मार के वेखिए, बस इना पंजा झगड़िया विच ही मनुख सवेर तो शाम तक और रात तो सवेर तक इना ही झगड़िया विच पिया होया। इसनू परमेश्वर दा सिमरन भोली गया। इसे लई गुरु तेग बहादुर साहब कहिंदे हन, अब मैं कौन उपाहु करूं, जे बिद मन को संसा चूकै पवनिद पार परों, जन्म पाए किश पलो ना कीनो ताते अधिक डरो। इसलिए कबीर जी कहिंदे हन, भाई सुख तो उन्हां ही पाया है जिन्हां ने जपिया श्री वाहिगुरु। तो इसलिए झूठी माया सब जग बांधिया, झूठी माया ने तो सारे जग नू बनिया, पर रब दे प्यारे अमृत वेले जाग के नाम जपदे हन, सेवा सिमरन करदे हन, अपना जीवन सफल करदे हन। सेजे रमत नैन नहीं पेखो, ए दुख कांस्यों कहोरे, मेरी मत बौरी मैं राम बिसार्यो, किन बिद रहन रहोरे, बाप साब का करे लड़ाई, माया सद मतवारी, बड़े पाई के जब संग होती तब हूँ नाहे प्यारी, कहत कबीर पंच को चगरा चगरत जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांधिया। कबीर जी कहंदन, मैं राम रमत

नमूना दस रहे हैं, वह गुरु के सिख की सेवा है। गुरु का प्यार तो पता नहीं कितना होगा। और फिर वड्डी गल सोचन वाली यह है कि जे सिख नूं प्यार है गुरु दे नाल, तां गुरु नूं भी घट प्यार नहीं है। चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है। एक बार सतगुर मंत्र सिमरन मात्र सिमरन, ताहे बारंग बार गुर हेत है। आख्या गुरु का सिख श्रद्धा दे नाल एक कदम गुरु वाल रखदा है, गुरु करोड़ां कदमां अगों लैण लई आ रहा है। एक बारी गुरु का सिख प्यार दे नाल, सिदक दे नाल।

0: श्रवण करो प्रोफेसर दर्शन सिंह जी दी नवी कैसेट अपना घर।
1: जे वो अपनी मर्जी नाल आनंदपुर दी धरती ते बैठ के अपने जीवन का फैसला भी ना कर सके ओनू उथों ही रोक दिता जाए। जे वो अपनी मर्जी नाल अपनी ही राजधानी दिल्ली विच भी ना पहुंच सके रस्ते विच।
0: भाई हरजिंदर सिंह श्रीनगर वालियां दी नवी कैसेट

गावो। सिमरो जास विषम पर एक है, नाम जपत अगनत अनेक है। वेद पुराण सिम सुत आखर है, कीने राम नाम एक आखर। किनका एक जिस जीव सावे, ताकि महिमा गनी न आवे। कांखी एक है दर्श तुहारो, नानक उन संग मोहे उतारो। सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम रहो। प्रभ कह सिमरन गर्भ न बसे, प्रभ कह सिमरन दुख जम न सह। प्रभ कह सिमरन काल पर हरे, प्रभ कह सिमरन दुश्मन करे। प्रभ सिमरत कछ बिघ्न न लागे, प्रभ कह सिमरन अनदिन जागे। प्रभ कह सिमरन पौ न व्यापे, प्रभ कह सिमरन दुख न संतापे। प्रभ का सिमरन साध के संग, सर्व निदान नानक हर रंग। प्रभ कह सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद, प्रभ कह सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध। प्रभ कह सिमरन जप तप पूजा, प्रभ कह सिमरन बिन सह दूजा। प्रभ कह सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभ कह सिमरन दरगह मानी। प्रभ कह सिमरन होय सो भला, प्रभ कह सिमरन सो फल फला। से सिमरे जिने आप सिमराए, नानक ताके लागो पाए। प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभ कह सिमरन उदरे मूचा। प्रभ कह सिमरन तृष्णा बूझे, प्रभ कह सिमरन सब किच सूझे। प्रभ कह सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ कह सिमरन पूर्ण आसा। प्रभ कह सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद माहे समाए। प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभ को सिमरे से तनवंते, प्रभ को सिमरे से पतवंते। प्रभ को सिमरे

क्यों दिन रात इन्हां नशियां विच गलतान होए हैं, क्यों अपना आप अजाई गवारे हैं, आ नरकां दा राह अपना बैठे हैं, दिन रात इन्हां नशियां विच गलतान होए हैं। ये नशे ते एक दिन शरीर नूं खा जांदे, एक जन्म अजाई गवा जावे, एक शरीर नूं मिट्टी विच रोल जावे। इसे वास्ते ते भाई साहब कहिंदे, कुट्ठा हुक्का चरस तमाकू गांजा टोपी ताड़ी खाकू इनकी ओर ना कबू हूं देखै रैतवंत सो सिंह बसिख है। ओयो सिख रहनी बहनी विच है जिहड़ा भुल के भी ना नशियां दे नेड़े नहीं जांदा। पर अफसोस अज दा सिख तां दिन रात नशियां विच ही गलतान है। बड़िया सुंदर कोठियां होंदियां, जदों जाके तकी दा बड़िया कीमती बोतलां लगियां होंदियां। किस वास्ते कि जिहड़ा साडे घर आवे तके ये सेठ है, बड़ा वड्डा सरदार है, हर तरह की कीमती बोतल इसके घर लगी हुई। अफसोस सानू शराब दी बोतलां ते माण रहा, सिखी ते माण ना रहा। वो सिखा किते शराब की बोतल की थां वो गुरु बख्शिश की कोई निशानी तेरे घर लगी होंगी, कोई श्री साहब लगी होंगी, तत कह सकता सी कि मैं सिख हां। बोतलों का माण करदा ते फिर कहना गुरु मेरे ते बख्शिश नहीं करदा, भुलिया तो तू आप फिरदा, गुरु तो दूर होंदा फिरदा। वो सिखा गुरु का वचन मन दस्तार सजा। एक सरदार मिलिट्री का सरदार है, गुरु रामदास पातशाह के दरबार विच इशनान किया, दस्तार सजाई, पर जदों दाड़ा बनन लगा एक 8-9 साल का बच्चा सवाल कर दिता, ऐ सरदार जी आ की लपेट रहे हो? बेटा मैं दाड़ा बन रहा, दाड़े नूं लपेटे है। कहन लगा नहीं ये दाड़ा नहीं, ये की लपेटे है? ओ बेटा मैं दाड़ा लपेट रहा। कहन लगा सरदार जी ये दाड़ा नहीं, ये सिखी दा निशान साहब है जिन्हों लपेट रहे हो। जिस कौम का निशान लपेटिया जावे वो कौम भी लपेटी जाती, जिस कौम का आ निशान साहब ही लपेट दई है कौम लपेटी गई। ये तो लहराउंदा ही चंगा लगता है। वो सरदार के नेत्रां विच जल वहण लग पिया। एक 8-9 साल के बच्चे ने सवाल किया, बस मन बदल गया, दाड़ा खोल दिता, प्रकाश कर दिता। आओ भाई बस किते किसे बच्चे की गल भी कई बार तीर बन के लग जाती है। ते आओ जे सचमुच गुरु दे हां ते फिर आ बचन गुरु दे हन। सुंदर दस्तार सजा, अपना सुंदर दे दाड़ा प्रकाश कर, ते गुरु दे दर ते नमस्कार कर, रहनी बहनी विच रहो, इन्हां नशियां दा त्याग कर, फिर गुरु बख्शिश करेगा, तेरियां झोलियां भर देवेगा। आ वही